0: मौसम बड़े
1: आई एम गुड, मैं अपना फेवरेट पवित्री आपके लिए बेच रही हूँ। मेरा सब कुछ है सिर्फ मुकद्दर नहीं, काश ओहो मेरा सब कुछ ना होता सिर्फ मुकद्दर होता, काश काश काश काश।
0: बड़ा बड़ा
1: कैसा लगा आपको मेरी सिस्टर गुड चिकम दे, मेरी सिस्टर गुड मॉर्निंग कह रही है सपना, वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग टू, और मेरी तरफ से आपके सिस्टर को बोर्ड डेरा

The summer from Vana. Summer, thank you so much. आपकी शो बोध नाइस है, प्लीज टू घंटे किया करें. एंड दूसरी कौन सी चैनल पर लगता है? वह कौन कौन से चैनल आते हैं आप मुझे ये बताएं सब ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इस चैनल पर शो होता है.

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? आप फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
0: We're walking with the band. 88.4 Dark.

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

0: Music, your request.
1: This is Radio Station.
2: Radio Aman.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मुअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर, कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर, बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश, रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
4: फेस वॉश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर सकते।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.4 Pahadpur, Global FM 91 Dear Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Dhaka. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसर नशर पाकिस्तान की, ये आवाज है खलील ताबे शमान की, ये आवाज है खूबसूरती की, ये आवाज है शिफा की। जी जनाब, हर रोज की तरह आज भी आपकी समातों की नजर सुपहर की 4 बज चुके हैं और जनाब 4 बजते ही आप लोगों के साथ हम केसर नशर पाकिस्तान का ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं कि जिसका नाम है केसन टी टाइम शो। हाँ जनाब, चाय के वक्त में, जबकि हर कोई जनाब इस वक्त में अपनी नींद को पूरा करके, जी जनाब, दिन भर की थकान को खत्म करके एक दफा फिर से एनर्जाइज होकर जनाब दिन भर के जो बचे कुचे काम होते हैं, जो कि आखिरी काम होते हैं, उनको आप करने की कोशिश कर रहे होंगे या करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि जनाब ये जो गर्मी है ये आपको ना ही कमरे से निकलने दे रही है, ना ही पंखे के आगे से, ना ही कूलर के आगे से, ना ही आपको जनाब ये एयर कंडीशन यानी कि एसी के सामने से उठने की जो है हिम्मत दे रही है, बल्कि क्या अभी मैं देख रहा था कि टेम्परेचर जो है वो 52 क्रॉस कर गया है जनाब, 52 यानी कि 50 से और ऊपर 52 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेरे ख्याल में कि इस वक्त मैं तीनों रेडियो स्टेशन से, मुझे इस वक्त आप डेयर इस्माइल खान से भी सुन रहे हैं, आप मुझे पहाड़पुर से भी सुन रहे हैं, और आप मुझे इस वक्त टांग में भी सुन रहे हैं, तो भी वापडा के जो नुमाइंदे हैं, जो अफसरान हैं, अगर उनमें से कोई हमें सुन रहा है, या आला अहदेदार या फिर हुकूमत के आला नुमाइंदे जो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे खुदारा ये गुजारिश है कि इस गर्मी में लोगों की जानों को बचाएं, क्योंकि ये प्रायोरिटी होती है किसी भी हुकूमत की कि जानों माल की तहफ्फुज़ देना ये हुकूमत का काम होता है। तो देखते हैं कि आपने देखा कि ईद के 3 दिनों में बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं की गई है, बिल्कुल भी ट्रिपिंग भी नहीं थी, यानी कि आप अगर देखें कि 9 जिलहज्जा से पहले थोड़ी बहुत ट्रिपिंग भी हो रही थी और लोड शेडिंग भी थी, लेकिन ईद के 3 दिन मुसलसल हमें बिजली दी गई है। इसका मतलब ये है कि जनाब इमरजेंसी के तौर पर आप आवाम को बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जनाब। ये बात सामने आ चुकी है कि अगर इमरजेंसी हो, खुशी का मामला हो, गम का मामला हो, तो उस तक वापडा के पास इतनी अहलियत है कि वो इमरजेंसी में हमें बिला तातुल बिजली फराहम कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है तमाम, इस वक्त अगर कोई हमारे मुल्क के अहदेदारान सुन रहे हैं, तो काइंडली इस कौम के ऊपर रहम कीजिए, लोगों को मरने से बचाइए, क्योंकि लोग मरने के करीब हैं इस गर्मी में, कि इस गर्मी में जब लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो रही है, तो कोई तरीका बनाइए, चाहे ये इमरजेंसी आप एक हफ्ते के लिए लगाएं, चाहे आप 10 दिन के लिए लगाएं, लेकिन इसमें पाकिस्तान की आवाम को बिजली मुहैया करें, ताकि वो अपनी जानें बचा सकें, कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मौसम की सूरत हाल कोई ऐसी आगे नहीं है हमारे पास कि जिसमें कोई उम्मीद दी जा रही हो कि बारिश 1-2 दिन के अंदर या फिर कोई इस तरह का सीन है, तो जहां पर हुकूमत की जिम्मेदारी है जनाब अपने अपने लोगों के जो हकूक हैं और ये जान को बचाना, जान के तहफ्फुज़ देना, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है जब ऐसे हालात पैदा हो जाए, ठीक जनाब, कि जब इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और पता नहीं आगे कितने जाती है, और हुकूमत को अपने इकदाम उठाने चाहिए जनाब। एक हमारे खलीफा थे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ये सोच रखते थे सवाबदीद का कि अगर दरिया फिरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर जाता है, भूखा मर जाता है, तो उसका जवाब दे उमर बिन खताब होगा, ठीक है जनाब। तो क्या आप नहीं होंगे जवाब दे, जो कि हालत सूरत हाल बन रही है, तो खुदारा बिजली बिला तातुल फराम कीजिए जनाब पाकिस्तानियों को, ताकि इस तपती हुई झुलसती हुई गर्मी में लोगों को कुछ सुख का सांस मिल सके।

0: जी जी मुझे कहते हैं खलील ताबे शवान और यह है केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आप हमारे हमारे प्रोडक्ट जो केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्रोडक्ट इस वक्त आपके इलाकों में पहुंच चुके हैं और आपकी नीड के मुताबिक आपको क्या चाहिए, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हर तरह से हल करने की हम कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, अपने नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जरिए। और इनको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ स्किन के हवाले से बल्कि सेहत के हवाले से भी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। कैसे नेचुरल पाकिस्तान के ढेर सारे प्रोडक्ट, अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि अगर आपको आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको अरसे दराज से जोड़ों का दर्द है, पट्टों का दर्द है, कमर का दर्द है, फालिज लकवा, या आपके घर में कोई ऐसा बंदा बच्चा मौजूद है या बड़ा मौजूद है जिसको प्रॉब्लम है जनाब आसाबी कमजोरी का मसला है, यानी कि उसके पट्टे कमजोर हैं, चलने फिरने में मसला है, ठीक है जनाब, मूवमेंट्स में मसला है, उठने बैठने में मसला है, तो केसन का शिफाए दर्द ऑयल जो कि ऑस्ट्रिच ऑयल है आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के ये फायदे मिलेंगे, क्योंकि जनाब ये ऑयल ना सिर्फ दर्द को खत्म करता है बल्कि आपके पट्टों के अंदर जान भी डालता है। अगर हाजमे के मसाइल का शिकार है तो केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप जी मौजूद है, प्राइस में बहुत ही कम है, 150 रुपए का हमारा ये सिरप है, बहुत ही लेटेस्ट एडवांस फार्मूला है जनाब। और आपके मैदे के जितने भी मसाइल हैं, जैसे कि सीने की जलन हो, जैसे कि तेजाबियत है, जैसा कि गैस है, जैसे कि कब्ज के मामलात हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन के मामलात, इनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं केसन हाजमा कंट्रोल सिरप। और अगर मोटापे का शिकार हैं तो अपने जिस्म की फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं केसन की हाजमा हाजमा में आ जाते हैं, वेट कम पेट कम जितना वेट कम पेट कम हर्बल फक्की जो हमारी है इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल करके 15 दिन के अंदर ही, सिर्फ 15 दिन के इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा कि आप का मोटापा, आपकी चर्बी किस हद तक पिघल चुकी है।
1: रात का साया फूलों में वो तितली का एहसास आया।
0: जी जनाब टॉपिक हमारा है और इस टॉपिक के ऊपर भी आपने आज बात करनी है। और जनाब कहावतें आप बहुत सारे ममालिक की सुनती हैं, बहुत सारे कल्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कहावतें होती हैं, जैसे कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है जनाब, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह की बहुत सारी कहावतें जो है आप सुनते हैं। और आपको कौन सी कहावत याद है या जिसका आपने कभी इस्तेमाल किया हो या आपको उसके मतलब का पता हो, ठीक है जनाब, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा और हमें बताइएगा कि भाई आपके जो है कौन सी कहावत याद है। ना सिर्फ आपको कहावत याद है बल्कि उस कहावत का आपको मतलब भी पता है, आप उसका मतलब भी आता है। तो हमारा नंबर है जनाब 03449363366, इस नंबर पर आप लोग रब्ता करके SMS करके हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जनाब आपको कौन सी कहावत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की कल मैं कहावत सुन रहा पढ़ रहा था कहीं पर और उसी वक्त मेरे जहन में आ गया कि कल आप लोगों के साथ भी ये कहावत भी शेयर करूंगा और साथ में वो कहावत बताऊंगा। बहुत मजे की कहावत थी, मुझे देखकर हंसी भी आई, सुनकर हंसी भी आई और उस कहावत की वाकई समझ में आई। कहते हैं कि सवाद की एक कहावत है कि जो शख्स निस्वार मुंह से निस्वार निकाल कर बात करे मुझे ऐसी आगे बात करने से पहले कहते हैं कि जो शख्स मुंह से निस्वार निकाल कर बात करे, समझ जाओ कि बहुत ही कीमती और सच्ची बात है। समझ आ गई, ठीक है जनाब, यानी कि कोई बंदा अगर अपने मुंह से, क्योंकि आजकल भाई निस्वार कितने की हो गई है, है कि 50 रुपए की हो गई, कितने की हो गई, अब कोई बंदा मुंह से निस्वार निकालेगा, अक्सर ये होता है कि जो निस्वार रखने वाले होते हैं ना, अगर उनको कोई खाने की चीज पेश की जाए ना तो वो पहले हिसाब लगाते हैं मुंह के अंदर जो निस्वार है वो कितने की है, आगे जाके फिर उन्होंने आगे वाली चीज लें या नहीं लें, ठीक है ना, क्या वो निस्वार से चीज महंगी है या सस्ती है। अगर कोई आगे से ऑफर कर दे भाई ये चीज खा लो, अगर वो देखेगा भी निस्वार से महंगी है तो फिर तो वो निस्वार निकाल लेगा, अदरवाइज सोचेगा कि नहीं भाई उसकी कीमत 20 रुपए है 10 रुपए है, तो वो कहेगा 50 रुपए की तो मैंने निस्वार रखी हुई है, तो मैं निस्वार को ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुंह से निकाल कर साइड में रख दे फिर खा लें, खा लें, एंजिन इस बार भी खाई जाती है। तो चला, अब कहने का मकसद ये है कि जो बंदा मुंह से निस्वार निकाल कर कोई बात करता है ना, वो पैसे जाया कर रहा होता है, और कोई भी पैसे जाया करके कोई झूठी बात या एवं फजूल सी बात नहीं करेगा। तो ये बड़ी मजार किस्म की कहावत मुझे लगी है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो बंदा निस्वार मुंह से निस्वार निकाल कर बात आपको बताए ना, तो उसके ऊपर जरा भी डाउट मत किया करें, ये मत सोचा करें कि इसकी बात झूठ है, बल्कि समझ लिया करें कि ये जो बात करने वाला है ना, इसने मुंह से निस्वार निकाल के जब बात की है, ये कीमती बात है और ये सच्ची बात है। तो जनाब आप कॉल करेंगे हमें और SMS कर सकते हैं 03449363366, इसी के ऊपर आप लोगों ने आज मेरे साथ कोई कहावत शेयर करनी है, ठीक है जनाब। और मैं, मुझे भी पता चले कि भाई और भी बहुत सारी कहावतें जो है मौजूद हैं, ताकि हम भी उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अच्छा जी, कल बात मैं कर रहा था आप लोगों के साथ केसन के व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से, कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिनको आप व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं सामीन इकराम कि जिनका ताल्लुक आपकी स्किन की ग्लो के साथ है, जैसे कि हमारा ग्लूटा व्हाइट क्रीम है, वो भी आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो लेकर आती है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से हमारा एक फेस वॉश है जिसको हम कहते हैं प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, और ये एक खास किस्म का ग्लो आपको देता है, और ये वो ग्लो होता है जो हर फीमेल की जरूरत होता है। ग्लो क्या होता है, ग्लो आपके चेहरे के ऊपर एक नूर, लेकिन वो नूर अगर वो पिंक कलर में आ जाए तो उसे ब्लश कहते हैं, ठीक है जनाब। और अक्सर खवातीन जब मेकअप करती हैं तो ब्लश ऑन लगाती हैं, ठीक है जनाब, ब्लश का यूज करती हैं, तो वो क्या होता है आपके गालों के ऊपर, आपके रुखसार के ऊपर क्या होता है, आपके रुखसार के ऊपर पिंक ग्लो देने के लिए होता है। तो क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट भी है केसन के पास जो ब्लश लगाए बगैर आपके गालों के ऊपर ग्लो आ जाए, और वो भी पिंक कलर का ग्लो? तो इसका जवाब बिल्कुल यस है, ऑफ कोर्स वी हैव केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। क्यों ये आपकी स्किन को ग्लो देता है भाई?
1: जब से है अपनाया चेहरे पे पिंक ग्लो सा केसन लवली फेस वॉश, चेहरा लवली बनाए, क्योंकि यह खास फॉर्मूला वुमेन जो आपको अपना हक दिलाए। हाँ।

जनाब आपका हक आपके पास। अब आप ये को सोच रहे होंगे भाई केसन वालों ने कोई नई कहानी छोड़ दी है, हैं जनाब आपका हक आपके पास। तो बिल्कुल जनाब आपका हक, हमें पता है ना कि आपका हक क्या है। जो मर्द है उनके अपने हकूक होते हैं, जो खवातीन होती हैं उनके अपने हकूक होते हैं, और जब मर्दों और औरतों को अपने अपने हकूक मिल जाएं तब मजा आता है और इंसान कहता है जी अब हमारा हक जो है हमारे पास है। तो भाई खवातीन अब एक चीज देखिएगा कि मर्दों के लिए अलहदा से कपड़े होते हैं, खवातीन के लिए अलहदा से कपड़े होते हैं, क्योंकि उनके हकूक हैं और उनके मुताबिक उन्होंने ट्रेडिशनली उनको चलना होता है। तो इंडिया के अंदर ऐसा है जनाब कि खवातीन के लिए अलहदा से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, क्रीम्स भी, फेस वॉशेस भी, ऐसा सारा कुछ। उसकी वजह भी एक है और उस वजह के मुताबिक फिर प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन को डिजाइन किया जाता है। सो केसन का जो प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है ये स्पेशल फार्मूला है। इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर लिखा हुआ है द स्पेशल फार्मूला फॉर वुमेन फॉर फेयरनेस एंड व्हाइटनिंग। ठीक है जनाब, ये फेयरनेस और व्हाइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए ये एक स्पेशल फार्मूला है जो खवातीन की स्किन के लिए बनाया गया। तो जब जब खवातीन की की जरूरत की चीज उनको देंगे जो उनका हक है, जो और लोग उनको नहीं दे रहे और उनको जनाब मर्दों वाला फेस वॉश देकर कह रहे हैं कि भाई यही इस्तेमाल करें, तो हम कहते हैं भाई मर्दों वाले फेस वॉश से आप करें तौबा। ठीक है जनाब, और तौबा के साथ साथ मर्दों वाले फेस वॉश से पर्दा भी करें। ठीक है जनाब, और लें अपने घर में केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश जो आपका हक है, आपके लिए आपकी स्किन के मुताबिक फॉर्मुलेशन में तैयार करदा केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।

0: जी जनाब, आपका हक आपके पास। और क्यों, कौन सा फेस वॉश इस तरह का पिंक ग्लो आपको देता है जो कि स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटर के ऊपर मुश्तमिल होगा, जो कि डीपली आपके स्किन के अंदर जाकर आपके पोर्स में से भी गंद को निकालेगा, गंदगी को निकालेगा, डर्ट को निकालेगा, डस्ट को निकालेगा और आपके स्किन के ऊपर जो डेड लेयर पड़ी हुई है उसको भी रिमूव करेगा। ठीक है जी। तो अच्छा जी, शिप्रा उस्ताद जो है वो हमें प्रॉपर कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। क्या कोई पहाड़पुर एफएम के ऊपर हमें कोई इशू आ रहा है?
1: कैसा लवली फेस वॉश चेहरा लवली बनाए, क्योंकि यह खास फॉर्मूला वुमेन जॉब को अपना हक दिलाए। हाँ, आपको अपना हक दिलाए कैसा प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।
0: जी जनाब, आपका अपना हक के खवातीन होकर, लड़की होकर आप अपनी स्किन के मुताबिक फेस वॉश का इस्तेमाल करें। तो मैं आपको बताऊं कि जनाब कौन से इंग्रेडिएंट को खवातीन का इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो जनाब वो है पोमीग्रेनेट, यानी कि अनार का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इससे बनी हुई चीजें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पिंक ग्लो लेके आती हैं, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नरिश करती हैं। और पोमीग्रेनेट को स्पेशली जाना जाता है जनाब खवातीन की स्किन के हवाले से। तो जनाब ये जो फेस वॉश है, एक वक्त में हम इसको अनारी फेस वॉश भी कहते थे, अनारी फेस वॉश, ठीक है जनाब, क्योंकि ये अनार के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है और अनार का जो अर्क होता है वो स्पेशली सिंफ नाजिक को जो सपोर्ट करता है। और जो पिंक इस फेस वॉश का जो कलर है वो तकरीबन 98% जो है इसका पिंक कलर है, पिंक एंड गोल्डन। पहले ये पिंक एंड व्हाइट में होता था, लेकिन आजकल जो इसकी पैकेजिंग हमने चेंज किया थोड़ी सी, तो पिंक एंड गोल्ड कलर स्कीम के अंदर ये मौजूद है सामीन ग्राम। और ये प्रोडक्ट जो है हमने, यकीन कीजिए, क्योंकि हमने मेल के लिए अलग से फेस वॉश लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि ग्लूटा वाइट फेस वॉश है, जैसे कि गो पिंपल है, या फिर जैसे कि चारकोल स्क्रब फेस वॉश है। ये फेस वॉश इस वक्त केसन का सबसे ज्यादा बिकने वाला फेस वॉश है, सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ केसन इस केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। और इसको अगर आप उन लोगों में से हैं, फेस वॉश आपको ग्लो कब देता है ये सवाल है, एक कितना टाइम चाहिए होता है कि एक व्हाइटनिंग वाला फेस वॉश आपके चेहरे के ऊपर पिंक ग्लो के लिए आ जाए। सो जनाब उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी रेगुलरिटी के ऊपर, कि आप कितना रेगुलर फेस वॉश को इन अ डे 2 times जो है इसको यूज करते हैं। दिन में 2 मरतबा जो है फेस वॉश का इस्तेमाल करने वाली लड़कियां, और स्पेशली मैं आज जब बात कर रहा हूं जनाब, आपका हक आपके पास केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश की सूरत में, ये मेरी बहनों के लिए, ठीक है जनाब, हमारी माओ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है केसन की तरफ से, कि हमने ये फार्मूला स्पेशल तैयार किया है और इसके अज्जा वो हैं जो खवातीन की स्किन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं और उनकी स्किन की क्लिनजिंग, उनकी स्किन की पोरिंग, उनकी स्किन की जो टोनिंग है या उनकी स्किन के ऊपर जो ग्लो का आना है वो इस फार्मूलेशन के तहत आता है। बहुत ही इम्पैक्टफुल किस्म का हमारा फेस वॉश, जिसे हम कहते हैं केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।
1: व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, आपका हक आपके पास।
0: जी जनाब, आपका हक आपके पास, केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश की सूरत में
1: है अपनाया, चेहरे पे पिंक ग्लो सा आया। केसन लवली फेस वॉश चेहरा लवली बनाए, क्योंकि यह खास फॉर्मूला वुमेन जॉब को अपना हक दिलाए। हाँ।

0: ने आप केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, और अगर आप सिंफ नाजिक हैं, फीमेल हैं, और अभी तक आपने अपनी स्किन के लिए स्पेशल खवातीन के लिए बना हुआ फेस वॉश इस्तेमाल नहीं किया, और मैं आपको ऑन अ टेबल ये चैलेंज देता हूं कि आप इसका कोई भी फेस वॉश यूज कर रही हैं, आप इस इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा और आप इस फेस वॉश को केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश को इस्तेमाल करने के बाद आप खुद कहेंगी कि भाई वाकई केसन वालों ने ये हमारी स्किन के लिए ही खास तौर पर बनाया है। ठीक है जनाब, क्योंकि आप जब एक आम फेस वॉश यूज करते हैं और जब आप हमारा लवली फेस वॉश यूज करते हैं तो आपको बहुत क्लियर तरीके पर इसके रिजल्ट्स का पता चलता है। आप मुमाजना कर सकते हैं कि एक आम फेस वॉश आपकी स्किन को कितना जल्दी रिजल्ट देता है। ग्लो, स्पेशली हम पिंक ग्लो की बात कर रहे हैं, केसन का ये पिंक ग्लो फार्मूला आपका हक आपके हाथ में।
1: फेस वॉश जब से है
0: जो जनाब, जब भी आप इसे शुरू करेंगे और इंशाल्लाह एक फर्क, एक पिंक ग्लो महसूस करेंगे, क्योंकि जनाब इसके जो अज्जा इसके अंदर मौजूद हैं बहुत ही प्रीमियम किस्म की इस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमने इस फेस वॉश को लॉन्च किया था, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, उस वक्त उसका जो रेट था ना, मैं अगर आपको उसका केजी में रेट बताऊं तो 800 रुपए केजी उस इंग्रेडिएंट का रेट था, जो कि ग्लो देने के लिए और इम्पैक्ट दिखाने के लिए काम आता है। बीच में वो इतना ज्यादा शॉर्ट हो गया, उसकी इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई, जो हम भी अपने फेस वॉश के अंदर यूज कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसको यूज कर रही थी, और उन सब कंपनियों ने जो जो ये इंग्रेडिएंट यूज कर रहे थे अपने फेस वॉश के अंदर, चूंकि उसकी प्राइस 800 रुपए से 4800 रुपए के जी तक चली गई, तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने बहुत ज्यादा रेट बढ़ा लिए थे। और एक लॉजिकली बात भी है कि जब आप कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप देखें होटलों के ऊपर जब कढ़ाइयां मिलती हैं, तो जैसे घी महंगा हुआ, जैसे कि चिकन महंगा हुआ, ठीक है जनाब, तो कढ़ाई जो 700 रुपए किलो होती थी 1300 रुपए के ऊपर चलेगी, क्योंकि उसको बनाने वाली चीजें महंगी हो गई ना, तो वही रेट तो नहीं रह सकता। लेकिन आप यकीन कीजिए, हमारा वो इंग्रेडिएंट जो 800 से 4800 तक चला गया था, हमने सिर्फ 50 रुपए बढ़ाया था फेस वॉश, 350 से हमने इसको 400 किया, हालांकि उसकी प्राइस बहुत आगे होनी थी, बहुत सारी कंपनियों ने 600-600 रेट भी कर लिए थे, लेकिन आपके साथ केसन कितनी सिंसियर है, उस महंगाई का बोझ भी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आप यकीन कीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा प्राइसेस पीछे से बढ़ी है, लेकिन वो हमने उसका एक्स्ट्रा जो खर्चा है ना, वो हमने आपसे कीमत बढ़ाकर नहीं लिया है, क्योंकि आप हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज नहीं किया गया। अगर हम करते तो फिर वो, क्योंकि आपको ओवरऑल पता है कि पिछले ये जो अमेरिका इसराइल और ईरान की जंग हुई है, उसमें हर चीज कहां आसमान पर पहुंच गई, हमारी चीजें भी ऐसी हैं, हमारी चीजें भी आसमान पर पहुंची, लेकिन यकीन कीजिए कि पिछले 3 माह में हमने वो सारा का सारा जो बर्डन था ना, वो बोझ था महंगाई का, वो हमने अपने ऊपर लिया और आपको ट्रांसफर नहीं किया है। यानी कि पर प्रोडक्ट हम अगर 100-150 रुपए रेट बढ़ा लेते तो वो बर्डन हमारा तकसीम हो जाता, लेकिन हमने अपने सर के ऊपर लिया है, और इस उम्मीद पर थे कि जनाब 1 माह के अंदर पेट्रोल नीचे आ जाएगा तो सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। एनी हो, आपको बताने का मकसद ये था कि बहुत ही प्रीमियम किस्म की प्रोडक्ट हम बनाते हैं, लेकिन आप तक जब पहुंचाते हैं तो उनकी प्राइस जो होती है वो बहुत ही रीजनेबल होती है। तो बिल्कुल भी केसन से मत चुका करें जनाब, और केसन के प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें। अगर आप हमारे यूजर नहीं हैं तो आप यकीन कीजिए, जब आप यूज करेंगे, स्पेशली मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, टांक में सुनने वाली तमाम बहनें, जी आपका हक हमारे पास है केसन लवली फेस वॉश की सूरत में, और आप अपना हक ले सकते हैं। ठीक है जनाब, ये आपका हक है कि आप सिंफ नाजिक हैं, आप खातून हैं, आप लड़की हैं, और आपकी स्किन के मुताबिक ही प्रोडक्ट आपको डिजर्व करती है, और वो है केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।
1: फॉर्मूला वुमन जो आपको अपना हक दिलाए। हाँ।

0: जी जनाब, आपका हक आपके पास, तो भाई आपके पास आपको कहाँ मिलेगा केसन का लवली फेस वॉश। तो जनाब ये आपके शहर टांक में अगर आप किसी भी बड़े जनरल स्टोर कॉस्मेटिक स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर पूछिएगा केसन का जो स्पेशल खवातीन के लिए फेस वॉश है, क्योंकि अब हमने मर्दों वाले फेस वॉश से पर्दा करना है जनाब। तो केसन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश पिंक कलर के शेप में, वो एक इस बड़ी ईद के ऊपर कुर्बानी के ऊपर ना एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, तो एक बीवी जो है अपने मियाँ से कह रही थी कि मुझे ना पिंक वाला बकरा चाहिए पिंक वाला बकरा चाहिए। उसने कहा मैं कुर्बान जाऊं, पिंक बकरे कहाँ होते हैं, बकरे पिंक नहीं होते, जूते पिंक मिल जाते हैं, चूड़ियां पिंक मिल जाती है, कपड़े पिंक मिल जाते हैं, हर चीज पिंक मिल जाती है, लेकिन बकरे पिंक नहीं होते। लेकिन ये फेस वॉश जो है जनाब चूंकि खवातीन के लिए है तो जनाब ये पिंक कलर के अंदर मौजूद है, और आप इसे यूज करेंगे इसकी खुशबू तो केसन के हर एक प्रोडक्ट की लाजवाब किस्म की है। लेकिन ये कितना इम्पैक्टफुल है, ठीक है जनाब, जो फेस वॉश आपको एक दो दिन के अंदर रिजल्ट बताता है वो इम्पैक्टफुल होता है। वो आपको एक ही दफा जब चेहरा धोएंगे तो फिर उसके बाद तौलिए से खुश करेंगे तो फिर पता चलेगा कि वाकई भाई इस फेस वॉश के अंदर कुछ मौजूद था, कि इसने अपना इम्पैक्ट जो दिखाया है। और ये तो बात हो रही है आपके हक की, आपका हक आपके पास। जी जनाब, पहाड़ टांक में बता रहा था आपको कि मंसूर जनरल स्टोर हमारे मेन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है जनाब, सदाम प्लाजा के अंदर हैं। तो सदाम प्लाजा में आप जब भी जाएंगे आपको इंशाल्लाह केसन के हर प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं वहां पर, मंसूर जनरल स्टोर हाजी जरबत खान, आपको वहां से मिलेंगे। अदरवाइज उसके साथ अरबाब कॉस्मेटिक स्टोर है, उसी के साथ जो है इमरान जनरल स्टोर है, उसी के बिल्कुल सामने जो दूसरे प्लाजे हैं जैसे कि फैसल गिफ्ट सेंटर है, उधर ही कराची जो है कॉस्मेटिक सेंटर है, उधर ही दुबई कॉस्मेटिक सेंटर है, अब्दुल्ला जनरल स्टोर है, सिटी कॉस्मेटिक है, इन सब के पास आपको मिलेंगे। डेयर इस्माइल खान में हमारी अपनी शॉप है केसन शॉप अकबर प्लाजा, वहाँ पर तशरीफ लाएं तो आपको पिंक ग्लो फार्मूला केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश,
1: ये खास फार्मूला वुमन जो आपको अपना हक दिलाए, आपको अपना हक दिलाए,
0: स्पेशल फार्मूला
1: केसन लवली फेस वॉश, चेहरा लवली बनाए, क्योंकि ये खास फार्मूला वुमन जो आपको अपना हक दिलाए।

खरीदते हैं भाई, सबका बेहद शुक्रिया। इसके अलावा पहाड़पुर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है अवेस ट्रेडर्स, आप वहां से भी ले सकते हैं। बिल्कुल ये कौन सी जी बिल्कुल हाँ, जो डखाना है उसके साथ है, रात की एजेंसी भी साथ में है, और डखाना जो है चौक है वहां पर हमारा अवेस ट्रेडर, वहां से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रंगपुर अड्डा के ऊपर हसीब

0: आप हासिल कर सकते हैं। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जनाब जो आ चुके हैं, अब कॉलर्स को मौका देते हैं, एसएमएस वालों को भी मौका देंगे, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जनाब। जनाब कौन है हमारे साथ?
1: कैसे हैं खलील भाई?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। खालिद तो नहीं है चहकान वाले भाई?
1: खालिद बात कर रहा
0: था। खालिद कैसे हो? ठीक हो? बहुत अरसे बात, कहाँ घूमते शहजादे?
1: बस देखना खलील भाई, थोड़ी मसरूफियात जा रहा
0: हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ी मसरूफियात थी आपकी? आप तो मेरे ख्याल में एक डेढ़ माह बाद नहीं है हमारे शो में खालिद। अच्छा चलो, आप भी मसरूफ रहते हैं, हमने तो कहा सिर्फ हम मसरूफ होते हैं, खालिद भी बिजी होता है। अच्छा थोड़ा सा अपने मुंह को जो है ना वो मोबाइल के साथ ले जाएं, आवाज कम है बहुत आपकी। हाँ अभी ठीक। पहले कहाँ बैठे हुए थे? वो सामने आप पंखे के आगे रखा हुआ था मोबाइल को? पंखे को हवा लगवा रहे थे कि कहीं ये बेहोश ना हो जाए, हम तो होंगे सो होंगे, ये बेहोश ना हो जाए। खुद को इतना नहीं संभालना पड़ता जितना कि मोबाइल को संभालना पड़ता है। क्या कहेंगे जनाब?
1: तो मैं ये कहूँगा
0: हाँ हाँ,
1: तो
0: एक कहावत बताएं जिसका मतलब भी आप जानते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: खड़काएं खड़काएं
1: खड़काएं खड़काएं का तारा वाला।
0: अच्छा जी,
1: निशार को गला।
0: क्या मतलब है फिर इसका?
1: इसका मतलब है कि जो बड़ा ढाटी होता है ना, जो मशहूर होता है चोर है ये ढाटी, वो उसका ताला वाला कहते हैं ना, ये चोर है ये इनका जनगो है, उसका ताला वाला कहते थे। जो माँ होता है जो छोटा होता है ना,
0: अच्छा ठीक है। अच्छा मैं जो मुझे आपके लफ्ज़ों की समझ नहीं, लेकिन आपकी कहावत की समझ आ गई है कि बाज़ औक़ात जो है शुदे लोग पूरा मुल्क खा जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो है जो सामने होते हैं।
0: चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, मजा आया हमें, बहुत शुक्रिया खालिद, थैंक यू।
1: और खलील भाई
0: जी जी,
1: और मैं जो ना उस दिन चक्कर लगाया था कैसा निकला,
0: हाँ हाँ,
1: तो मैं हाजमा कंट्रोल ले गया था और जो है ना पत्नी वो ले गया था, और हाजमा कंट्रोल का जो है ना मैं ये कहूँगा कि जबरदस्त रिजल्ट था।
0: अच्छा जबरदस्त रिजल्ट है, आपने खुद पिया या किसी और को पिलाया?
1: मैंने तो थोड़ा सा पिया था कि हम इस्तेमाल करते, मैं उनसे जो है ना पूछता हूँ, तो वो चीजें के जो है ना उसका नजर का मसला होता है या हाजमे का ना,
0: हाँ,
1: तो वो कहती है कि जो है ना ये जैसे जलन होती है तो मैं जैसे जो है ना ये पीती हूँ तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जो है सारे जिस्म में पानी की होती है,
0: ठंडक सी आ जाती है पूरे जिस्म के अंदर, है जी। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और आप आए, मुझे वैसे पता नहीं था कि आप आए थे। एनी हो, खालिद भाई चहकान से आते रहते हैं, वैसे पहले भी ऑयल शैम्पू और को पिंपल वगैरह ले जाते हैं। एनी हो, आप भी कॉल कीजिएगा हमें 03449363636 के ऊपर, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ में उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और आलिया हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम आलिया बखर से, शो बेस्ट है, ऑयल सुपर है आपका भाई, एंड चाचा शबर

0: आलिया को सलाम दीजिएगा। ओके जनाब, बखर से हैं आलिया और चाची शबरा को सलाम दे रही हैं। चाची शबरा सुन रही हैं, शबीर साथ तो जरूर उन्होंने जवाब दे दिया होगा। अस्सलाम वालेकुम
1: फॉर्मूला वुमन जो
0: एक और कॉलर एसएमएस एन को कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मोमिना टांग से हूं। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। आपके पास। अब मुझे इसका मतलब भी सुनाओ ना, अब इसका मतलब भी सुनाओ कि वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। ये वैसे एक कहावत है, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। इसका मतलब मुझे नहीं आता, तो मोमना आपने मुझे बताना है। कॉल आ रहे हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम चाचा शाहजहान। शाहजहान जी किवें हाल है भाई? चंगे वधे वे ठीक। गर्मी तुहाडे पासे भी है या सारे पासे जोर मारी खड़ी है सिर्फ? गर्मी तो खैर होवे, लेकिन इवे तो न होवे ना सही। जी एक गर्मी तो नहीं आती, को तो मारा ना देन, खुदकुशी आ देने को तो है सही। गर्मी तो असर इटी हुई है, गर्मी होवे सही। गर्मी गर्मिया च गर्मी हो सी, सर्दी तो न हो सी, लेकिन कतल करने वाली गाल तो न होवे, खुदकुशी करने वाली गाल या मारने वाली गाल तो न होवे ना सही। अल्लाह को शिकायत नोट नहीं करवा सकते? अल्लाह पाक रहम करवा।
2: बिल्कुल नेक लोग इन सारे कुल भोंग नेक लोग पैन और दुआई करें, अल्लाह पाक कुल मत कह दी सुन गिंदा होवे।
0: मैं चक मत कह दी सुन, तू साथ वे ऐसा न मंग दे,
2: अस मंग दे साथ सारे साढ़े को नेक जितने पैन उन्हें अल्लाह ज्यादा सुन दी।
0: अच्छा चलो उन्हें अल्लाह ज्यादा सुन दी। चलो ठीक है, कोई कहावत सुनाओ सको, कोई कोई कहावत सुनाओ सको, कहावत कोई क्यों सही तुसा तो माशाल्लाह पुराने बंदे हो, तो बहुत सारे कहावत आंदे हो
2: सर। सर कहावत क्या तो सर पता नहीं लगता, हाल चाल अपना गर्मी
0: अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा चलो ठीक है, बस तुम्हारी हाजिरी लग गई सही बात, बहुत मेहरबानी
2: शुक्रिया।
0: आमीन आमीन, अल्लाह को खुश रखे सही। डेली आए वो डेली गर्मी है, ऐसा लाइव प्रोग्राम करे सो इंशाल्लाह। चलो ठीक है, तुम्हारी गाल मान की दे, शिकायत न करने अल्लाह को बिल्कुल ही ठीक। पिंड की में पक्षी गर्मी ना हो सही, वादन के पिंड पक्षी आम पक्षी भाई चेहरे पे। अच्छा गर्मी है ना से पिंड ते अम्मा को साड़ छोड़े सी, कैसे नहीं है तो को पता होवे।
1: फॉर्मूला वुमन जॉब को।
0: अच्छा मोमिना टांग से है और ये वाला कहते हैं कि वो दौर गए, वो दिन गए जब खलील खान, उन्होंने लिखा खलील खान लेकिन असल जुमला है खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। जनाब एमबी साहब आ चुके हैं और क्या वो फाख्ता उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते? अस्सलाम वालेकुम मोहतरम।
3: वालेकुम सलाम, किने फाख्ता उड़ाऊ सर जी, गर्मी की पट गई इच्छा तो साको
0: फाख्ता बाहर ही नहीं निकल दे, वादन साको अंदर बल
3: अंदर लुके पे वड़े पे बकुरा जे कोई माया के बहु काल मिलाऊं चार खलील सर को सलाम की दुआ करूं।
0: आगे जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया, गर्मी बाहर नहीं निकलन देंदी ना सही। मेंबर साहब आदन तुसा क्यों घबरांदे वे, ए गर्मी तो गर्मियां गर्मियां नो होसी ते बिया कदन होसी। मैं के सही ए गर्मी त नहीं त कुछ भई गर्मी दी माँ आई वी अजकल
3: बिलकुल मैं महसूस करना पी थो बिलकुल महसूस नहीं पी सेंस बैठे वे वजह ए सी बैठे।
0: अच्छा जी निकलते चलो अच्छी गाल है सही, तुसा अगर महसूस कर के कहावत कुछ साको सुना के वैसो आई पता होवे तो
3: कहावत के सुनो जेरी आखो सुना
0: नहीं तुसा सुनाओ जेरी तुसा आखो के वाकई एक कहावत में सुनी हुई है ते बहुत दफा इस्तेमाल ही कीती है ते लोग ही कहावत को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे ने।
3: अच्छा लोग बस ओके क्या देते उन आसमान से गिरा ते खजूर में अटका सर।
0: अच्छा जी अक्सर तुम्हारे सामने भी कोई वाक्य पेश थे तुसा आके आ भाई आसमान से गिरा खजूर में अटका है जी क्या बंदे आखो हो कि भाई मैं कुछ चंगा करें ना पिया ते ओ ही गाल है ना साहब। मैं एक प्रोग्राम सुना है कासिम डॉक्टर कासिम में वो लेक्चरर है ना मोटिवेशनल स्पीकर है में ता उन्होंने को एक स्टूडेंट है उन्होंने कहा सर मैंने आपका प्रोग्राम सुना था आपने कहा था कि नौकरी नहीं करनी चाहिए कारोबार करना चाहिए तो मैंने नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर लिया ठीक है, लेकिन आपकी आप मजे की बात यह है कि आप ना मेरे पास कारोबार है ना ही मेरे पास नौकरी है। तो एक बात आसमान से गिरा खजूर में अटका,
3: खजूर में अटका बिल्कुल जी। बाकी साहब सर जी केसन का जरा कंपनी का ना रखा है शुरुआत यकीन कर ये बहुत मुश्किल लगता है केसन की चीज है। लेकिन तो सर एक मुतारिफ कराए ना तो इनकी प्रोडक्ट का जरा रिजल्ट मतलब सबको मिले ना
0: हर तरफ केसन दे तराने। कल मैं कोई मैसेज की थी पहन के भाई जान ये जितने भी तराने हैं ना केसन के ये सारे हमें व्हाट्सएप कर दे, इतने जबरदस्त हैं हम ये बार बार सुनना चाहते बिल्कुल जी बहुत मेहरबानी सही शुक्रिया टाइम
3: की लोग साहब टाक को डी खान को फरपुर को जितने सुन लेते हैं सारा को फल बड़ा सलाम।

0: लवली फेस वॉश चेहरा लवली बनाए, क्योंकि यह खास फॉर्मूला वुमन जो आपको अपना हक दिलाए। हाँ, आपको अपना हक दिलाए केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश, आपका हक आपके पास।
1: जी जनाब, आपका हक आपके पास। और अगर आप पंजाब में मौजूद हैं, पंजगराई में, दरिया खान में, कलूरकोट में, तो जनाब आपके आसपास भी ये खवातीन का हक जो है वो राजा राजा राजा गफूर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी साहब जी।
1: सही, किवें हाल है? ठीक ठाक है। मैं कह के खवातीन दा एक हक राजा गफूर को मौजूद है, पंज गिरें दी तुसा हासिल कर सकते। वैसे ही
2: बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं, अगर जिस टाइम चाहे मेरे को जिस जरूरत मौजूद है
1: इंशाल्लाह तुहाडे कोल। मैं को बड़ी खुशी थींदी है कि बहुत सारे दुकानदारा का दिल बड़ा छोटा होंदा है, और दो चार प्रोडक्ट रखे होंगे, लेकिन तुसा माशाल्लाह केसन दे सारे प्रोडक्ट रखी पे वे, कोई भी गाह खाली नवे सी इंशाल्लाह। इवें गाल है सही?
2: इवें गाल है, शैम्पू मौजूद है, ऑयल मौजूद है, और जोड़ा पत्थर वाला टैग मौजूद है, वेट कम पेज कम हार्मोन कंट्रोल सिरप ये भी मौजूद है सारे को। अकबर परफ्यूम, ज़ारा परफ्यूम वो भी मौजूद है, करीम जी सारी कंपनी भी मौजूद है, और मुल्की सेहत भी है वो भी मौजूद है, ज़ाफ़रान की सेहत भी मौजूद है।
1: वाह जी वाह, माशाल्लाह सारे चीजें मौजूद हैं, बस सिर्फ लोगों को वंजन दे रहे राजा गफूर साहब ए केरा कांडाट कांडा सादात कंडा
2: सादात कंडे के सामने बिल्कुल सामने किचन
1: करो ना एक दफा तो जरे समान भेजे तो केसन दा एक पहना फ्लैक्सी बढ़ा के भेजे ताकि परो को लोगों को पता लगे जो केसन लिखा है। हाँ बस असा वह लोगों को दिसे सुनो कि सादात कंडा दे सामने वंजो तो केसन दा एक बोर्ड नजर आसी जांदो तो लिखा पिया है कि प्यारा लगना तो सब का हक है, समझ वंजो कि जनाब ओ जाय असा पहुंच गए हैं जेरी कंपनी सा कुछ सोना ते मिठा ते चिट्टा बणांदी है। ठीक है सही?
2: बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हाथा फेरा मौजूद पे अगर फुटा गर्मिया की फुटा थी बंदा को
1: हाँ बिल्कुल
2: मौजूद पे और बिल्कुल बेहतरीन इलाज
1: है। बस गारंटी तुस आप ही देने पे, असा तो बहुत पढ़ते बैठे हैं अपने इलाके के लोगों को गारंटी तो वारंटी तुसा देसो तो हर शायद वापसी है सही क्लियर असा दसेंदे भी रहने तुसे दसा करो जय को केरी शाह। हालांकि बहुत सारे शाइया ऐसे होंगे कि कह के बंदे को सूट नहीं करेंगे, लेकिन वत भी असा शायद अजिमा अपने उत्ते गिनने कि नहीं भी तो एक शायद सूट नहीं की, वत भी असा पैसे वापस करे सू, हालांकि स्किन का प्रॉब्लम थी सकते बाजूकात बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असा इतनी खुली ऑफर दी हुई, लेकिन सारे कुल कदम भी खुले शिया नहीं आंदे सही, यकीन करो तुसा ऑफ रिकॉर्ड देखो तो मैं कितने दफा ऑफर दी, एक साल तो तुहाडे कोल थी ना, कदम कोई खुली कुछ है तुहाडे गिन के
2: नहीं, नहीं
1: अगर लाख डेढ़ लाख की सारी सेल कर छोड़ी हुई तो एक बंदा भी कुछ है खुली हुई वापस नहीं गिन के आया, इसका मतलब है कि 100% रिजल्ट इन सारे प्रोडक्ट से लोगों को फायदा मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तो सब बार बार जो शिया मंगवेंदे हुए सारे को मतलब तो यही होना की लोगों को रिजल्ट मिलते पे सारे शिया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खुश रखे, बड़ी मेहरबानी, तमाम दोस्त जितने सुन रहे सबको मेरे तरफ सलाम थी किया, अगर बंदा कि मेरे रबता नंबर है वो इन्हें को मैं नोट करना, नोट कर दिन सर इंशाल्लाह वक्त दे मैं आसन मेरे ना रबता कर दिन सर
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
2: 0347-77-17-084
1: बिल्कुल इनके पास हमारे केसन के प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। राजा गफूर इनका नाम है, पंजाब साइड के ऊपर हमारा कोई और सेल पॉइंट नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश, थैंक यू। पंजाब साइड के ऊपर हमारा कोई और सेल पॉइंट नहीं है, अदरवाइज हम दुकानदारों के नंबर अनाउंस नहीं करते होते, लेकिन इनका सिर्फ अनाउंस इसलिए करवा रहे होते हैं कि दूर दराज के लोग जाते हैं तो जाने से पहले कॉल कर लें, क्योंकि उनका पेट्रोल उनका आना जाना जाया ना हो तो इनसे जरूर रब्ता कर लिया करें। पहाड़पुर में, डेरा में, टांग में तो हर दुकान के ऊपर ये चीजें मौजूद होती हैं, एक के पास नहीं होगा तो दूसरे के पास, दूसरे के पास नहीं होगा तो तीसरे के पास, लेकिन यहाँ पर ये स्पेशल पर्सन हमारे हैं कि जनाब इनको इसलिए अलाउ करते हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना कि एक ही हमारा सेल पॉइंट है, लोगों को तकलीफ ना हो। आमिर रहमान पाकिस्तानी सुन रहे हैं हमें जनाब। खलील भाई अगर वो आंसर किसी दिन की होती तो कोई भी ना निकालता, शबरा उस्ताद जुल्फकार अंकल चाचा अमानुल सलाम
0: लवली बनाए क्योंकि यह खास फॉर्मूला वुमन जॉब को अपना हक दिलाए। हाँ आपको अपना हक दिलाए केसम प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश।
1: जी जनाब शेख अहमद अवान से अच्छा जी इन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है, कोई कहावत भेजी है, मैं फिर भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। और शबीर उस्ताद हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक शबीर।
3: खलील भाई क्या है?
1: अल्लाह की शुक्र है सही, तुसा सुनो ठीक ही भाई तुसा?
3: अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है, प्रोग्राम सुन सकते हैं मजा आंदा है।
1: अच्छा जी माशाल्लाह सुनते पे हैं जी, गर्मी तक नहीं गर्मी हो सी तुम्हारे पास भी हो सी शदीद सही?
3: नहीं गर्मी है लेकिन ऐसा घबरते नहीं, अल्लाह को ले दुआ करे नहीं जो अल्लाह पाक हर मुसलमान जो ये रहे ना ख्वाहिश पूरी करे क्योंकि एक मौसम है अल्लाह पाक नियमत ही कसूर सारे अगर अपने मुकाबला करना चाहिए क्योंकि मजदूर मजदूरी बच्चों का कमान है लेकिन इस गर्मी से औखी नहीं जे ए सी से समझने वाला अपना मजदूरी नहीं करे लेकिन इंसान सर्दी और गर्मी और खुला भी बहुत मेहरबानी जनाब शुक्रिया नवाजिश और शबरा उस्ताद हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी महनूर हमारे साथ उर्दू वाली महनूर मौजूद है, सलाम कहिए हम कोड़े तो बहुत है बस सिल्की बालों का शौक बहुत है हमें, ठीक है हम तीन चीजें बहुत शौक से खाते हैं बिरयानी कसम
0: क्योंकि यह खास
1: और अम्मी की चप्पल है
0: दिलाए। हाँ।
1: तीन और कहते हैं कि दौलत कछुए की तरह आती है और खुशगो खरगोश की तरह जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है कछुए की चाल यानी कि बड़ी स्लो चाल होती है कछुए की और जाती किस तरह है खरगोश तेजी के साथ चलता है तो इसका मतलब है कि आती हमेशा स्लो है लेकिन
0: चेहरे पे पिंक ग्लो सा आया कैसा लवली फेस वॉश।
1: एक और हमारे साथ

0: सो जनाब उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी रेगुलरिटी के ऊपर कि आप कितना रेगुलर फेस वॉश को इन अ डे टू टाइम जो है इसको यूज करते हैं। दिन में दो मर्तबा जो है फेस वॉश का इस्तेमाल करने वाली लड़कियां, और स्पेशली मैं आज जब बात कर रहा हूं जनाब आपका हक आपके पास केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश की सूरत में, ये मेरी बहनों के लिए ठीक है जनाब, हमारी माओ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है केसन की तरफ से कि हमने ये फार्मूला स्पेशल तैयार किया है और इसके अज्जा वो हैं जो खवातीन की स्किन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं और उनकी स्किन की क्लिनजिंग, उनकी स्किन की पोरिंग, उनकी स्किन की जो टोनिंग है या उनकी स्किन के ऊपर जो ग्लो का आना है वो इस फार्मूला जनाब खवातीन का रख रहे हैं केसन प्योर।
1: Did you always want to be a superstar?
0: सो जनाब उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है आपकी रेगुलरिटी के ऊपर कि आप कितना रेगुलर फेस वॉश को इन अ डे टू टाइम जो है इसको यूज करते हैं। दिन में दो मर्तबा जो है फेस वॉश का इस्तेमाल करने वाली लड़कियां, और स्पेशली मैं आज जब बात कर रहा हूं जनाब आपका हक आपके पास केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश की सूरत में, ये मेरी बहनों के लिए ठीक है जनाब, हमारी माओ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है केसन की तरफ से कि हमने ये फार्मूला स्पेशल तैयार किया है और इसके अज्जा वो हैं जो खवातीन की स्किन को बहुत ज्यादा सूट करते हैं और उनकी स्किन की क्लिनजिंग, उनकी स्किन की पोरिंग, उनकी स्किन की जो टोनिंग है या उनकी स्किन के ऊपर जो ग्लो का आना है वो इस फार्मूलेशन के तहत आता है। बहुत ही इम्पैक्टफुल किस्म का हमारा फेस वॉश जिसे हम कहते हैं केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।
2: You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: It's 5 o'clock.
5: It's
4: 5
5: o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Your music, your request.
6: This is Radio Station.
7: Radio Aman.
8: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil.
9: Zamzam hair oil.
8: د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک
9: چمک
8: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی دا ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوز زال انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چی هایست مو یو فدوشی نو دمیلاوی دو پتا یاد ساتی فرانٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلاوی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
10: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
11: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

वो कैसी है मेरे खुदा तू इतने बता क्यों मेरा नसीब है ऐसे लिखा ऐसे अर्दुन को बिल्कुल खान का वाले शेरत लले शेख हासिन दिन लवाजी प्रोग्राम शब और इंतखाब गजल इंतखाब पोएट्री हर शामिल है उसी तुस बहुत रोजे ऐसी और पोएट्री जिकम देखा ना बहुत मुसर शामिल है ऐसे में हजार सर शामिल है उसी और देने लवासी खबर है तेरे बाहर खाप प्रोग्राम शिक्षी और इंतखाब हुई थी और रसर शामिल है क्या उर्दू वाले शामिल है पश्तो वाले शामिल है राशि खास शामिल है क्या रसर

वो जो लगता है हमें जान से प्यारा पागल, वो जो लगता है हमें जान से प्यारा पागल, वो है लाख में फकत एक हमारा पागल। वो जो लगते हैं हमें जान से प्यारा पागल, वो है इलाकों में फकत एक हमारा पागल। तेरी दरियाओं सी आदत ही तुझे ले डूबी, मैं बताता भी रहा ये है किनारा पागल। तेरी दरियाओं सी आदत है तुझे ले डूबी, मैं बताता भी रहा ये है किनारा पागल। हर किसी से नहीं उम्मीद लगाई जाती, हर किसी से नहीं उम्मीद लगाई जाती, हर कोई दे नहीं सकता सहारा पागल। हर किसी से नहीं उम्मीद लगाई जाती, हर कोई दे नहीं सकता सहारा पागल। वो भी किस्तों में दिखाता है अदाएं अपनी, वो भी किस्तों में दिखाता है अदाएं अपनी, वो भी होने नहीं देता मुझे सारा पागल। एस पी किया रोना तुम्हें कोई समझाता ही नहीं, मुझसे आकर तो कहो मैं हूँ तुम्हारा पागल। एस पी किया रोना तुम्हें कोई समझाता ही नहीं, मुझसे आकर तो कहो मैं हूँ तुम्हारा पागल। साथ तुम थे तो हमें रास्ता पागलपन भी, अब तेरी बात करेंगे कैसे गुजारा पागल। दूर तुम जब से हुए तब से हमारे हिस्से, दूर तुम जब से हुए तब से हमारे हिस्से, मैं खसारा है पागल। दूर तुम जब से हुए तब से हमारे हिस्से मैं खसारा है हसारा पागल।

ओके सी नेक्स्ट मैसेज रोग रहे दे वैजान ऐसी पूछ है तूने अपने होने की एक भी निशान नहीं छोड़े और चले गए। सोच रही हूँ कि मैंने मोहब्बत की राह में कितना नाकाबिले तलाफी खसारा किया है। आपकी सिस्टर मिराल बिठनी मनना खुर खुशालश